कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2120-3961 52 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681, 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316-27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007 प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होना खसम ना पाया।

0: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: बिलावल राग विच गुर अमरदास परसी है, ओहम पातक बिनास है। गुर अमरदास परसी है, सिद्ध साधक असास है। दे मालक सतगुरु धन गुरु अमरदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उच्चारण होया शब्द है। राग बिलावल है, ताल दा संबंध पहले घर विच गावन की हिदायत की है। आरंभ विच मंगलाचरण कीता है, करते दा जिक्र कीता है। सुरत नू इस फर्श ते बैठे हां अर्श तक पहुंचाउण दा मार्ग दर्शाया है। दूजे विच जुड़िया होया नू एक नाल जोड़िया, ओ एक है, ओ अनेकता विच भी एक है। भावे असी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पढ़ते हैं, पर जरूर ध्यान देना, जिस व्यक्ति ने अखर नहीं पढ़े, मैं बेनती करांगा, जिस व्यक्ति ने गणित नहीं पढ़िया, उन्हूं एक लिख दईए ते पता नहीं है भी की है। एक पढ़न दे लई गणित दी भाषा चाहीदी है, ते ऊड़ा पढ़न दे लई अखरां दी भाषा चाहीदी है, ते उपर जो आकार खिंची है ना ये इशारियां दी भाषा भी चाहीदी है। जेड़ा बंदा गणित दी भाषा नहीं जानता, अखरां दी भाषा नहीं जानता, इशारे समझने नहीं जानता, उसनू एक ओंकार बोलना भी नहीं आता, एक ओंकार हिरदे विच टिकाना भी नहीं आता। इस करके सतगुरु कहंदे ने तमाम ब्रह्मांड दा मूल ओ एक ओंकार स्वरूप, जो कि तमाम आकार अपने चों पैदा करके फिर आप उन्हां दी प्रतिपालना करदिआं अपने विच टिका के ते एक दिन उन्हां सारिआं नूं अपने विच समो के जो करता पुरख है वो है एक ओंकार। उत्थों तक पुज्जन लई उन्हूं अनुभव करन लई उन्हूं जानन दे लई मैं बेनती करांगा सतगुरु दी कृपा दी लोड़ है। सतगुर प्रसाद चूंकि आपू पहुंचया नहीं जा सकता, रोहला टुंडा अंधला क्यों गल लगा ता आए। जिस बंदे दे हाथ नहीं है, जिस बंदे दे पैर नहीं है, जिस बंदे दियां बाहां नहीं, वो दौड़ के किवें किसे नूं गले मिल सकदा। हजूर कहंदे ने तो पै के चरण कर पाव के लोयन सुरत करे, नानक कह सियानिए इव कंत मिलावा होए। उस सतगुरु की कृपा का राह सानू दर्शाया, तो सतगुरु कृपा करन उस एक ओंकार नू अनुभव कर सकीए, जान सकीए, मिल सकीए, उस नाल एक मिक हो सकीए।

0: जीवन मिलिया असी खादा भी है, असी कपड़े भी पहने, असी रात नूं सुते भी हां। हजूर कहंदे ने वो त्रिकार योग है, वो लानत योग है खाना, वो लानत योग है सोना, वो लानत योग है तन दे कपड़े पाने। भला केड़ा लानत योग है? आओ अगली पंक्ति वाल चात मारिए जी।
1: त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम ना पाया।
0: त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित होण खसम ना पाया। उन्हां दा शरीर त्रिग ते इस शरीर नाल साडा नाता बनिया, कुटुंब बनिया। कुछ कुटुंब है साडे शरीर दा, जिहड़ियां साडियां ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां वो शरीर का कुटुंब ने। ते शरीर के कुटुंब च ध्यान देना, अगे संसार के रिश्ते नातियां का कुटुंब जुड़िया। ते सतगुरु एक गल कहिंदे ने, त्रेके शरीर कुटुंब सहत सियो क्यों जित हुण खसम ना पाया। जे हुण खसम ना पाया, जे मनुखा जन्म प्राप्त करके अपने मालक नू ना प्राप्त किया, भलिया तेरा खाना भी लानत योग, तेरे कपड़े पहनने भी लानत योग, तेरा शरीर ते शरीर दे सारे बनाए संबंध भी लानत योग, क्योंकि तू हुण रब नू नहीं पाया। खसम मालक ओ धन भावे मेरे कोल है, मैं आरजी मालक बनिया फिरदा, अस मालक ओ है। भावे अज कपड़े मैं खरीदे, मैं तनते पाए, पर पाठ पटंबर देन वाला कौन है? जह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, प्रसाद ते उसदा सीगा, कृपा ते उसदी सी। ते सतगुरु कहंदे ने, तेरी कृपा नाल तन मिलिया, तेरी कृपा नाल मैनू कपड़े मिले, मैनू रात दी नींद भी तेरी कृपा नाल मिली। जे तू कृपा ना करे ना ते नींद भी नहीं आती। ध्यान च रखियो, ते तू सुता भी, पर जिस दी कृपा नाल तेनू सुंदर नींद आई, उस करते नू जे तू जानिया नहीं, उस नू पाया नहीं, ते तेरा सारा उठाया कदम लानत योग है। क्योंकि धन गुरु रामदास पातशाह एक गल कहंदे ने, तिनका खादा पैदा माया सब प्रित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब प्रित है, जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते। मैं बेनती करांगा, अगर उस करते दी रहमत दे नाल, हुण गल थोड़ी ध्यान च रखियो, साडा खादा सफल मालक नूं चेते करके खादा वाहिगुरु, साडे कपड़े पहनने सफल, कपड़े पहनने लग्या भी कहना वाहिगुरु तेरी कृपा है। ओ लोग भी ने जिन्हां नूं सुंदर तन दे कपड़े मिलने ते एक पासे रह गए, पुराने कपड़े भी नसीब नहीं हुंदे। मालक किड्डी कृपा कीती जे, तिनका खादा पैदा माया सब वित है, जो नाम हर राते तिनके घर मंदिर महल सराई सब वित है, जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए वरसाते, तिनके तुरे जीन खुरगीर सब वित है, जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाते, तिनके कर्म धर्म कार्य सब वित है, जो बोले हर हर राम नाम हर साते। ते मेरे साहब कहंदे ने, भलिया जे ए सारा कुछ प्राप्त करके खसम नू जानिया नहीं, वाहिगुरु नू पाया नहीं, ते तेरा लानत योग है ए सारा।

0: ते वखियाने है भी मुक्ति भी तुहाडे तो ते बंधन भी तुहाडे तो मुक्त बंद सब तुझते होवे ध्यान च रखियो मुक्ति देन वाले भी तुसी ते बंधना विच पाउन वाले भी तुसी भला रब बंधना च क्यों किसे नू पा देंदा कि रब दा वितकरा कोई भी किसे नू मुक्त कर दिता ते किसे नू बंधन विच पा दिता नुक्ता जरूर ध्यान च रखियो मुक्ति दा भी ओ देन वाला बंधना विच भी ओ पाउन वाला पर इंज मुक्ति ते बंधना विच क्यों पाउंदा क्यों किसे नू मुक्त करदा अगली पंक्ति इस चीज नू स्पष्ट कर दी है जी
1: गुरमुख होवै सो मुक्त कहिया मनमुख बंध विचारे
0: जेड़ा गुरमुख होवेगा गुरु वाल मुख होवेगा अमृत वेले जागया होवेगा नितनेम सिमरन कीता होवेगा सेवा निभाई होवेगी धन गुरु रामदास जी दे चरणा च मस्तक झुकाया होवेगा मैं बेनती करा ऐन गुना भरपूर वाला गुरमुख हो गया वो मुक्त हो गया ते जेड़ा मनमुख हो गया मन अगे रख लिया गुरु नू पिछे कर दिता जो मन किया वो किया एक गल थोड़ी जी गल ध्यान च रखियो मन सुधरिया होवे ते फिर मुक्ति दा राह गुरु वाल चलन वाला बना लेवे मन विगड़िया होवे ते समझ लेना दुनिया वाल दौड़े ते गुरु वाल पिठ दे दे जल कर करदम उपज है जल कर पंक विनाश मन कर उपजत पाप केल मन ही करत विनाश गल ध्यान च रखियो इस करके इस मन ने जे मनमुखता धारण कर ली ते रब ने साडी मनमुखता दा फल झोली विच पा के बंधन विच पा दिता ते जे गुरमुख बन गए ते रब ने साडी गुरमुखताई दा फल सानू मुक्त कर दिता जज है मजिस्ट्रेट किसे नू बरी कर दिता किसे नू सजा दे के जेल च भेज दिता हुण जज दा किसे नाल वितकरा नहीं है उन्हें जजमेंट कीती है भी इस बंदे ने कीता की है ते जे उन्दी जजमेंट विच आ गया भी बंदे ने गुनाह नहीं कीता एवें केस बन गया ते जज कर देंदा मुकत बरी कर देंदा ध्यान च रखियो कोई जज दा उस नाल लगाओ नहीं सी ते जिसनू जेल विच पाया जज दी उस नाल कोई वैर विरोधता नहीं सी उसने कीते होए दा फल ही उन्हां दोहां दी झोली विच पाया इस तरह मुक्ति ते बंधन करते ने दिते ने पर जेड़ा गुरमुख सी उंदी गुरमुखताई दा फल भुगत हो गया जेड़ा मनमुख सी उसकी मनमुखताई दा फल उन्हों बंधन विच 84 लाख जोन विच पाता गया जी
1: सो जान मुकत जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले
0: ओ जान मुक्त हो गया जिस दी एक नाल लिव लग गई अरदास जरूर करियो पातशाह तेरे चरणा नाल साडा प्यार होर पै जाए मैं एक बेनती कर लगा ध्यान दियो जिन्हें बैठे हो दरबार हाल विच ते जिन्ने बैठे हो इस वक्त मीडिया युग राही अपने अपने घरां विच रब दी कृपा साडे ते भी असीं इस वक्त गुर शब्द नाल जुड़ बैठे हां बड़ी कृपा साडे ते पर एक बेनती करियो पातशाह ऐसी रहमत कर दियो तुहाडे नाल इन्ना प्यार पै जाए कि असीं हर वेले आप जी नूं अपनी सुरत चों भुलाईए ना मेरे साहब कहिंदे ने सो जन मुकत जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले ओ हर वेले हरी नाल रहिंदा भाव वाहिगुरु जी नूं चेते विच रखदा है जी
1: तिन की गहन गात कही ना जाई सच्चा आप सवारे
0: तिन की गहन गात गहराई डूंघाई उन्हां दी अवस्था दा पूरन मूल आख्या नहीं जा सकता जिन्हां नूं करते ने आप सवार दिता ध्यान च रखियो जदों मालक आप सवारदा सच यह है उन्हूं गुरमुखताई दा जीवन बख्शदा उन्हीं संगत चंगी बख्शदा उन्दे अंदर शुभ गुण बख्शदा उन्हूं हर तरह नाल सवार देंदा मैं एक अर्ज करांगा शरीर ते असां बहुत सवारे है मालक रहमत करो साडी सुरत सवर जाए साडे जीवन दा आचरण सवर जाए ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿੰਨੀ ਬਹਿਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗਹਿਣ ਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉਹ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ

0: पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अति होर जानकारी ले कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
3: नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह इस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह हक हक अगा गुरु गोबिंद।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। यह 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इन्हां तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681 इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडी तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हॉल का पता है, यूनिट नंबर 2850, होपवेल प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www

मसकत काल नानक ते मुख उजले किति छुटे नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

हर प्रभु तेरिया केते गनो असंख अवगन हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाय माया मोह परम पूरे सुत दारास सुत दारास सो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास

0: सत नाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वर श्लोका नारा श्लोक पे महले पहले के लिखे टुंडे सराजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वार महला दूजा
1: जिसो चंदा उगवे सुर चढ़े हजार इत्थे चानण होंदे आ गुर बिन कोर अंदार महला पहला नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचे छोटे तिलवाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत।

0: जन गवाया जन गवाया।
1: पौड़िया पीने भोग भोगते हुए पसमण पौर सजाया, वड्डा हुआ दुनिंदर गल संगल कत चलाया, अगे करनी।

0: निरंकार आकार अचल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासे जाको हो है कृपाल सो जन प्रभ तुम मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहते रहियो।
1: किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमारथ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बद मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना।

0: हाथ धरियो जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तात स्यो तात मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो अमर दास अमरत शत्र गुर राम दियो गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बाण मूरत पंच परमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
1: श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो गुर कहा मान निज निदान सच जान मंत्र ए है निसबसर होए कल्याण रहे परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यो छाड़ तो होमे का फंद काट साध संग रत जियो दे गे हो त्रेस ने हो चित विलास जगत एहो चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता कर मत जियो नाम सार ही ए तार तज विकार मन गे अंग श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो
2: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नर बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस गुरु कै

भूले सोते दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की

0: बटे अराजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बुझी लापट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी बड़े बड़े राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बुझी लापट रहे माया रंग माते लोचन कछु न सूझी देखिया मैं के नहीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईदन नहीं तरापे बेन हार कहाँ अगाई रहाओ देन देन कारत भोजन बहु बिंजन ताकि मिटे न भूखा उद्यम करे स्वान की न्याई चारे कुंटा कोखा काम बंत कामी बहु नारी पार गृह जोह ना चुके देन प्रत करे करे पश्चतापे सोग लोभ मह सूके हर हर नाम अपार अमूल अमृत एक निदाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुरते जाना हर हर नाम अपार अमूल अमृत एक निदाना सुख सहज आनंद संतन के नानक गुरते जाना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तनासरी महला पांजवा वड़े वड़े राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बुझी लापट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूझी
1: आनंद भया बड़ पागी हो

दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे आभार पूरे।

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद न। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईआ जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां। चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगनियां ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निवाही। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी। बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथमे

जिन मेरा सतगुर देखे आ जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जन आमाए। मन चाओ भया

हर कृष्ण त्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु बाला प्रीतम अठवें पातशाह, धन धन श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी महाराज जी ने अज दे शुभ दिहाड़े पिता गुरुदेव सतवें पातशाह, धन धन श्री गुरु हर राय साहिब जी महाराज, माता कृष्ण कौर जी दे ग्रह श्री कीरतपुर साहिब जी विखे अवतार धारिया, तिना सतगुरां दा प्रकाश गुरपुरब, बेअंत संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी शरदा भावना दे नाल मना रहियां हन, यथा शक्त भेटावां अर्पण कर रहियां हन। सतगुर जी मेहरामत करनी सरबत साध संगत दियां हाजरियां, तिल फुल भेटावां दर ते परवान करनियां, अपने दरों घरों सिखी सिदक परोसा, नामदान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां, यात्रा सफला करनी सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दियां खुशियां अंदर, बेअंत संगत

0: देख ना पाएदा देख ना पाएदा।
1: पौड़ी जितेंद्र सबको वेख नदरी हेठ चलाएदा, आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएदा। वड़ो वड़ा वड़ वेदनी सिरा सिर धंधे लाएदा, नजर पठी जे करे सुल्ताना काऊ कराएदा। धर्म

डरले लेखा पीड़ छुटे नान का जू तेल पौड़ी अपे करना कियो हले आपे की तय थारी देखे की तय अपना

0: जिसके जी पुराण गोसाई मनो विसारी है, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।
1: धन धन

0: जन्मनिक कौन हर कृपा कर नित जप हर नाम तेरा आवे।
1: श्लोक महला दूजा। एक नहीं आस के दूजा लगे जाए, नानक आसक कांडिये सद ही रह समाए। चंगे चंगा कर मने मंदा मंदा होए, आस के होना आखिए जे लेखे वरते सोए महला दूजा।
2: सलाम जवाब दोवें करे मुडो कुथा जाए, नानक दोवें कूड़िया थाए न कहाई पाए पौड़ी जैसे।

पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए और मत सुनो अगली आवाज जो पिदूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैस अंदर पाए वजो गवाए अगला मुहे वो पण खाए जिसदा जिता खावना।

सब किस आपे आप बड़ी बटेटिया बटिया किस कहना कहन लगा ऐसो कता कदर करी दे दिया रिजक समाए साई का कमावनी और छोटी

परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद दिथे सचे पातशाह मल।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 त्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

ज्यों जोरु सिर नावणी आवे वारो वार, जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुवार, सूचे एह ना आखी है बहन जे पिंडा तो, सोचे से नानका जिन मन वसया सोय, सोचे एह ना आखी है बहन जे पिंडा तो, आशा की वार दी सतारवी पौड़ी नाल जो दो शलोक गुरु नानक साहिब महाराज जी दे दर्ज किते हुए ने, पहले शलोक दी विचार आपां कर चुके हां। इस पौड़ी नाल जो दूसरा शलोक है इस दा पाठ आप जी ने श्रवण कीता। सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज समरत सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बेअंत गल तक औगुणा नल भरे हां। तरस करो मेर करो पढ़दे ढकदे होए कथन और सरोत नूं साहिब जी एकाग्रता दी दात बख्शो, आप विच वर्त के दवैश तो रहत माड़े फुरनिया तो रहत अंदर दी शुद्धता बख्श के विचार करा लवो। हजूर ने इस पौड़ी नाल जो पहला शलोक दर्ज कीता है उस विच एक गल ते जोर दिता कि जिन्नी देर तक इंसान इस धरती ते जी रहा है इस मानव देही दे अंदर ते जो कुछ ओ अपने जिउंदे जी करेगा, जो कुछ ओ अपने जिउंदे जी अपनी जिंदगी विच करनी नामा बनाएगा, सच एवे ओ कीता होया काम इंसान दे नाल शरीर त्यागण तो बाद भी जाएगा। हजूर ने उस मनौत नूं जिहड़ी पता नहीं शुरुआत जीव दे चशके लई जां केवल पदार्थां दे तमे लई शुरू कीती, जिस लई शब्द कल दास ने वरत्या सी सिराद ते अर्ज कीती सी लफज सराद भी आउंदा, उंज गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च कबीर साहिब ने जिहड़ा लफज वरत्या है मुवे सिराद कराई उते सस्से नूं सिहारी लगी हुई। असी लफज शराद वरतने, शराद दे अखरी अर्थ ने के शरदा पूर्वक कीता होया काम, उंज श्राद्ध दे अर्थ एही ने जिहड़ा काम शरदा संयुक्त कीता जाए, उह श्राद्ध प्राणी दे जान तो बाद ब्राह्मण नूं भोजन छकाया जांदा है, उह मंत्र पढ़दा है, उहनूं दक्षिणा दित्ती जांदी है, उहनूं वस्त्र दित्ते जांदे ने, ते इस भरम नूं पाल के लोक इह समझदे ने जिहड़े साडे बजुर्ग मर चुके ने पितर, ए भोजन ए वस्त्र ए दृष्टमान दीयां चीजां सारियां उन्हां तक पहुंच गईयां, क्योंकि उस विचार नूं थोड़ा जिहा लड़ी जोड़न लई उत्थे हजूर ने एक बड़े कमाल दी उदाहरण ए दित्ती। कहिंदे ने मन लिया जाए जे तेरे मुताबक ए पदार्थ अगे पहुंचदे ने, उंज तां प्यारे ओ कोई पता नहीं जिहड़ा एक वारी घरों जिहदी अर्थी उठ के ओ किथे चला गया। सतगुरु ने ता बाणी चे शब्द कहे ने एक दज्जै एक दबियै इकना कुत्ते खाहे, कईयां नूं मरन तो बाद फूकिया जांदा है, कईयां नूं खाक दे सपुरद कीता जांदा है।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th Street साउथ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखोजी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जब जी साहब दी पावन छेवीं पौड़ी विच कुछ बुनियादी धार्मिक विचारां दा जिक्र करदे ने, प्रभु नूं भा जाइए, उनूं चंगे लग जाइए तां सब कुछ प्रवान हो जांदा है, पवित्र हो जांदा है, जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार धुल जांदे ने। समूह धार्मिक साधना महज इस वास्ते है कि प्रभु नूं भा जाइए। धार्मिक साधना दे प्राचीन समय तो यह भी एक साधना रही है तीर्थां दा रटन। ते तीर्थ दा अखरी अर्थ इन्ना ही है, ओ तट जिथो मनुख दरिया नूं पार करदा है, नदी नूं पार करदा है, जिथो पार होण दा वसीला मिले ओ तीर्थ। भाव सागर तो पार होण दा जो वसीला जिस थां तो मिले, जिथे प्रभु चिंतन जाग सके, जिथे हिरदा पवित्र हो सके, जिथे दैवी गुणा दी संपदा अंतर आत्मे दे च पैदा हो सके, ओ अस्थान तीर्थ है। क्योंकि दैवी गुणा दी संपदा दे नाल जन्मा जन्मांतरां दी मैल धुल जांदी है, इस वास्ते इस संपदा नू जल कहिंदे ने, भई इशनान हो गया और जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार धुल गए। बाहर पृथ्वी देते अनेकां इस तरह दे तट ने, तीर्थ ने, जिथे बैठ के किसे वक्त संत जना ने जप कीता सी, तप कीता सी, प्रभु दी धुन गुंजार उचारण कीती सी। तो आद काल तो एक ख्याल बने आया है, और यह सही है कि जिस वक्त मनुख परमात्मा ने नाम दी धुन उचारण करदा है, धुन दी सत्या पानी अपने आप विच आत्मसात कर लेंदा है, और मिट्टी भी आत्मसात कर लेंदी है। जप दा ज्यादा प्रभाव कोल पए हुए पानी ते पैंदा है, चाहे वह पानी नदी दा होवे, सरोवर दा होवे, चाहे किसे बर्तन विच पिया होवे। तदी ते असी देखदे हां कि पंज प्यारे जद पंज बाणियां दा पाठ करदे ने तो पानी अमृत बन जांदा है, पानी बाणी नूं अपने आप विच आत्मसात कर लैंदा है, अपने विच लीन कर लैंदा है। शब्द दीआं तरंगां नूं पानी अपने विच आत्मसात करन दी पूर्ण तौर ते समर्था रखदा है। इस तरह दे जल नूं, इस तरह दे पानी नूं अमृत आख्या गया है। जिन्हां नदियां दे तट दे ते ऋषि मुनियां ने, संत जना ने बहुत जप कीता है, बहुत तप कीता है, ते प्रभु नाम दी गुंजार ज्यादा उचारण कीती है, ओ नदियां अज तक पूजनीक गिणियां गईयां ने और पूजियां जांदियां ने। महज मतलब इतना है कि उन्हां नदियां दे जल ने नाम नूं, नाम दी धुन नूं, शब्द नूं अपने आप विच आत्मसात कीता। दूसरा प्रभाव पैंदा है खाक ते, मिट्टी ते। इस वास्ते आद काल तो सत पुरशां दे चरणां दी खाक मस्तक ते लोक लांदे रहे ने, और इहदे च सुख आनंद हासिल करदे रहे ने। ईरान दे एक प्रसिद्ध संत हाफिज दा कहना है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। जे तू आद तो लेके अंत तक वेखना चाहना है ता महापुरशा दे चरणा दी खाक दा सुरमा बना, अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां विच पा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, अंतर जामी पुरख बिधाते श्रद्धा मन की पूरे। हे प्रभु, एक मेरे भी मन दी श्रद्धा है, एक मेरे भी मन दी

0: मांग है,
1: पूरन कर, बख्शिश कर और ए सुख मैनू दे। केड़ा सुख थानू चाहिदा है कि सतगुरु कहंदे ने नानक दास अह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। हे अंतर आत्मा दी जानन वाले प्रभु, एक मेरी भी श्रद्धा पूर्ण कर, एक मेरी भी मंग पूरी कर। की मंग है, की चाहत है, नानक दास अह सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे। बस यही सुख मेरी झोली दे छपा कि संत दे चरना दी खाक मैनू बना दे। संत दे चरना दी खाक प्राप्त होवे तो जपया होया नाम खाक आत्म सात कर लेंदी है। नाम दी गुंजार पानी अपने आप देच आत्म सात कर लेंदा है। पानी अमृत बन जांदा है, खाक ऐसा अक्सीर सुरमा बन जांदी है जिस दे नाल लोक दी सच्चाई ते परलोक दी गहराई दिखाई देन लग पैंदी है। मेरे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा इस पौड़ी विच प्रवान कि हे प्रभु अकाल पुरख, धर्म दी सारी साधना इस वास्ते है कि तेनू असी भा जाइए, तेनू असी प्यारे लगिए। तो मैं तीर्थां दा इशनान ते ताई करां जे तेनू भा जावां। तीर्थ नावां जे तिस भावां, विण भाणे के नाई करी। मैं इशनान करां ते तेनू चंगा ही ना लगा, मैं इशनान करां ते तेनू भावां ही ना, तो ऐसा इशनान ते व्यर्थ चला गया। ए तीर्थां दा रटन व्यर्थ चला गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा अग्गे फरमान, जेती सिरष्ट उपाई वेखां विण करमा के मिले लई। पातशाह कहिंदे जिथे तक मैं सृष्टि नूं वेखदा, तरह तरह दे पदार्थ ने इस विच, धन संपदा है, तरह तरह दे माल खजाने नाल ए सृष्टि भरी पई है, पर कर्मा तो बिना कुछ भी प्राप्त नहीं आउंदा। बस कर्मा दा मटका जितना होवे, संसार दे पदार्थां दे जल दे चों उतना ही जल प्राप्त होंदा। अपनी कर्मा दी मटकी वड्डी कर लईए ज्यादा प्राप्त हो जांदा है। जगत ते पदार्थां दा सागर है, अनंत पदार्थ ने, जीवन मुक जांदा है, पदार्थ नहीं मुकदे। जिंदगी खत्म हो जांदी है, सुंदरता नहीं खत्म होंदी। जीवन दा अंत हो जांदा है, धन संपदा दा अंत नहीं होंदा। तो जगत विच बहुत कुछ है, लेकिन कर्मा दा मटका, कर्मा दी झोली जितनी होवे वस्तु तां उतनी ही प्राप्त होंदी है। जेती सिष्ट उपाई वेखां विण करमा कै मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुने। इत्थे मेरे पातशाह बड़ी बुनियादी गल करदे ने, जे सृष्टि विच बहुत कुछ है तां मनुख दी मत विच भी बहुत कुछ है। मनुख ने अजे बारों ही खोजे है, सागर दा सीना चीर के मनुख ने मोती लब्बे ने। पहाड़ां दी कुख दे चों मनुख ने चांदी सोना हीरे जवाहरात लब्बे ने। दरियावां दी खाक ते रेत दे चों मनुख ने नीलम मूंगे पन्ने लब्बे ने। जिथे सृष्टि ए पहाड़ तरह तरह दे रतन जवाहरात नाल भरी पई है, मनुख दी मत भी भरी हुई है। मनुख दे मन देच भी बहुत कुछ है, मनुख दी बुद्धि देच भी बहुत कुछ है, पर खोज अजे बैरूनी है। अजे बारों खोज खोज के मनुख थकया नहीं, ਅਜੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਿਆਂ, ਉੱਠਦਿਆਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸੌਂਦਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ। ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੋਜੇ ਨੇ। ਖੋਜ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਜ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਖੋਜ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਖੋਜ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ। ਕੁਛ ਔਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਦਨਿਆਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਲਵੀਏ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਚੋਂ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਤਨ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਤਨ, ਖਿਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਭਾਵ ਦੇ ਰਤਨ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਤਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੌਗਾਤ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਇਸਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਰਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਇਸਦੀ ਖੋਜ, ਇਸਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਕਰੇ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਬਹੁਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਬਹੁਖੰਡੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੋਜਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣੇ। ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਤਨੀ ਸੁਰਤ ਗਹਿਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਉਤਨੇ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਸੰਖ ਤੇ ਸਿਪੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਸਿਪੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਖ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਘੋਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਜਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਰਤਨ ਪਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ ਖੰਡੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਨੌ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੌ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਜ ਖੋਜ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਛ ਆਏ ਬੋ ਨਾ ਕਛ ਜਾਏ ਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਗਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮਤ ਦੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੀਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਲੱਭੇਗਾ, ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਲ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ, ਮਾਣਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤ ਇਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌ ਨਿਧਾਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਪਿਆ, ਨਿਰਵੈਰ ਪਿਆ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਹੀ ਚਿੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਰੱਬ ਆਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿੰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਿੰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਤਨ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਖੋਜੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਖੋਜੋਗੇ ਨੌ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨੌ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਛੇਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਕਿ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰਤਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਦਰਸਲ ਸੋਝ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੂਝ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੁਛ ਬੂਝ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਸੋਝ ਮਿਲੇ। संसार दी सोझ ते असी संसार तो लै लैने बाहरों लै लैने धन की है रूप की है रंग की है पदार्थ की ने ए सोझ ते सानू कदम कदम ते मिल जांदी है मां बाप तो मिल जांदी है परिवार तो मिल जांदी है संसार तो मिल जांदी है पर उन्हां रत्ना दी बोझ जो मनुख दे अंतर आत्मे च पए ने गुरु तो बिना नहीं मिलने इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच गुरु दी बहुत वड्डी महानता है ते गुरु नानक ने जिस मार्ग नूं जन्म दिता उस मार्ग दा नां ही गुरु घर पै गया गुरु मत पै गया ते गुरु नूं मिले बिना प्रभु तक पहुंचना बहुत औखा है बहुत औखा है। गुरु मार्ग है गुरु रस्ता है इस वास्ते इस रस्ते दा नां भी पै गया गुरु पंथ ओ पंथ ओ मार्ग जो गुरु ने बनाया है जो गुरु ने ही संवारिया है शिंगारिया है उसे ते चल के ही मनुख परमात्मा तक पहुंच सकेगा। तो गुरु कोल मंगना की है आखिर मनुख दा मन अमंग ते हो नहीं सकदा मंगना की है तो मंग ए मंगनी है गुरा एक दे बुझाई हे गुरु बख्शिश कर एक बूझ बुझा एक सूझ दे एक समझ दे केड़ी बूझ केड़ी सूझ केड़ी समझ सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जो सारे जीवां दा दाता है जो सारियां नूं रोजी दे रहा है ओ मैनू बिल्कुल भुले ही ना जिसनू भुल जाइए संबंध टुट जांदे ने जिसनू याद करदे रहिए संबंध जुड़े रहिंदे ने मां बच्चे नूं भुल गई है बच्चे नाल संबंध टुट गया बच्चा मां नूं भुल गया है मां नाल संबंध टुट गया वड्डा भरा छोटे नूं भुल जावे छोटा वड्डे नूं भुल जावे संबंध टुट गए मित्र मित्र नूं भुल जान तो भुलदियां ही संबंध टुट गए जगत दे तमाम संबंध याद ते खड़े ने चेते ते खड़े ने घर दे जो पदार्थ पे है उदे नाल भी संबंध जुड़दा है याद करके जो चेते च निकल गया है पदार्थ वो भावे है लेकिन फिर भी नहीं है क्योंकि याद दे चो निकल गया चेते दे चो निकल गया जिस वस्तु नाल संबंध जोड़ना है उसका चिंतन उसका चेता बड़ा लाजमी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो चित दे चो निकल गया संबंध टुट गया जो याद दे चो निकल गया रिश्ता टुट गया गूढ़े तो गूढ़ा रिश्ता वड्डे तो वड्डा रिश्ता भी याद ते खड़ा है जिसनू जितना ज्यादा याद करिए उतना गहरा संबंध जुड़दा है उतना गहरा रिश्ता जुड़दा है। तो परमात्मा ते व्यापक है सर्व व्यापक है रोम रोम विच व्यापक है और इस नाल संबंध जुड़ सकदा है याद करके। एक मनुख कोल बैठा हुंदा है ते असी कह देने आ पुछदे आ भई ये जिहड़ा कोल बैठा है ये कौन है थोड़ा की लगदा है ते मनुख बोल पैंदा है ये ते कोई दूर दा जापदा है। तो दूरी ते दो फुट दी भी नहीं है कोल बैठा है बिल्कुल कोल बैठा है और मनुख कह रहा है दूर दा जापदा है। एक ऐसे मनुख दा नां लिया गया जो गालबन 5000 मील दी दूरी ते रहिंदा है कि जैसे नाम लिया गया एकदम सुनन वाला खिड़ उठया प्रसन्न हो गया कि कहन लगा वो ते साडे नेड़े दा है 5000 मील दी दूरी ते रहण वाला नेड़े दा है कोल बैठा होया दूर दा है। परमात्मा बहुत निकट है बकौले भगत रविदास कह रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सो होई ए हाथ भी दूर हो सकते हैं उते रोम रोम देच उते व्यापक है लेकिन दूरी क्यों है याद देच नहीं कोई संबंध नहीं उसका चिंतन नहीं। तो उस परम शक्ति नाल जो साडे रोम रोम देच व्यापक है ते दैवी आनंद दी मालिक है दैवी संपदा दा जो महान खजाना है जो गुण निधान है सड़े रोम रोम विच व्यापक है लेकिन साढ़े चेते चो निकल गए, साढ़ी याद दे चो निकल गए, साढ़े चिंतन दे चो निकल गए। इस वास्ते कोल होंदा होया भी दूर है, और इतना दूर है कई दफा मनुख ने कह दिता है कि उते सतवें आसमान दे, उते सतवें पाताल दे छे। दरअसल जिस नाल कोई संबंध नहीं, जिस नाल कोई याद दा रिश्ता नहीं, उते है ही दूर। ते जिस दिन परमात्मा दी याद अंदरों चल पैंदी है, ते गुरुए बूझ बुझा देंदा है, उस दिन मनुख नूं पता चलदा है कि हथ भी दूर है, उते इस तों भी नेड़े है। कहो रविदास, हाथ पे नेरे सहजे होए सोहोई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। उते तेरे विच है, उते तेरे अंदर वसे होया है। तो गुरु कोलो ए बूझ लेनी है, गुरु कोले सूझ लेनी है, ते ए अरदास करके ही मंग सकांगे, ए बेनती नाल ही प्राप्त कर सकांगे। गुरु ते हुक्म नहीं चल सकदा, नानक हुक्म ना चल नाल खसम चले अरदास, तो गुरा इक दे बुझाई, सब ना जिया का इक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जो राजक रहिंद है, रोजी दहिंद है, जर्रे जर्रे दी जो पालना कर रहे है, ओ मेनू भुले ना, ओदी याद बनी रह, और उसकी याद ही जीवन देचो अनेकां रतना नू प्रगट कर देंदी है, दैवी संपदा नू जन्म दे देंदी है। जिथे प्रभु चिंतन है, उथे प्रभु आनंद है, जिथे प्रभु विसर गया है, उथे सारे दुख ने। जिथे परमात्मा दी याद है, उथे परम प्रकाश है, ते जिथे परमात्मा भुल गया, उथे ते मसिया दी रात है, उथे ते भटकना है, उथे ते ठोकरां ने। और कितनिया ठोकरां ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। परमात्मा नु भुल जाइए, चेते चो उस नु कढ दईए, तां कोई एक रोग थोड़ी व्यापदा है, अनेकां रोग शरीर नु आके लगदे ने, मन नु आके लगदे ने, सारी जिंदगी दोजक बन जांदी है। उसकी याद ही जीवन नु स्वर्ग बना देंदी है, और उसनु भूल जाना ही नरक बन जाता है। इस वास्ते साहब सानू मंगण दी जाच सिखांदे ने, गुरु कोलो की मंगना है, गुरा इक दे बुझाई, सब ना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाऊं।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जा फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है, यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
2: जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस दरे नौनिक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे।
1: जपजी साहब दी सतवीं पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुख दी बुनियादी लालसा दा जिक्र करदे ने चाहत दा ख्वाहिश दा प्राणा दे गहरे तल विच जीवन दी आस बड़ी प्रबल है जीवन दी लालसा बड़ी प्रबल है और ये हकीकत है कि जितनी प्रबल जीवन दी लालसा होवेगी उतना ही प्रबल मरण दा भय होवेगा। एक सिक्के दे ये दो पहलू ने और एक पहलू अलग नहीं कीता जा सकता। जीवन दी जितनी वड्डी लालसा मरण दा उतना ही वड्डा भय। किसे मासूम बच्चे नू जद कोई बुजुर्ग असीस भी देंदा है तो यही कहंदा है तेरी उम्र बहुत वड्डी हो गई तू हजारां साल तक जीवे तू बहुत वड्डी उम्र भोगे तो बहुत वड्डी उम्र भोगना कोई असीस नहीं है इनू आशीर्वाद नहीं समझना चाहिदा। पृथ्वी दे उत्ते ऐसे दरख्त खड़े ने जिन्हां दी उम्र 2000 साल तो भी ज्यादा है। अजगर सप कहिंदे ने बहुत लंबी उम्र रखदा है। सागर विच अनेकां ऐसियां मछलियां ने जो 500 साल तो भी ज्यादा जिंदा रह सकदियां ने। तो ज्यादा जीवना कोई खास मायने नहीं रखदा। सफल जीवन जीवना धर्म दा ए मूल उपदेश है। लंबी उम्र भोगनी ए कोई बहुत वड्याई नहीं चंगी जिंदगी भोगनी ए वड्याई है। तो सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान है कि जीवन दी चूंके पहली लालसा वड्डी उम्र है ज्यादा जीवना है। रोगां विच ग्रसिया होया मनुख जो दायमी रोगी है दिन रात रोग दी पीड़ा विच बतीत हो रहा है ओ भी जीवना चाहता है। बुढ़ा हो गया है हड्डियां दा ढांचा हो गया है चलण दी समर्था नहीं रही सुनन दी समर्था नहीं रही कुवते गोयाई भी नहीं रही सोच शक्ति भी नहीं रही पर जीवना ओ भी चाहता है। जीवन दी बहुत वड्डी प्रबल लालसा इस बुढ़े दे अंदर भी मौजूद है। और जितना प्रबल जीवन दी अंदर कोई लालसा रखेगा उतना ही मौत दे भय तो भयभीत होवेगा। तो सतगुरु देव जी महाराज कहंदे उम्र इतनी लंबी होवे कितनी जे जुग चारे आर जा रूहे जमीन देते इतनी वड्डी उम्र अज तक ते किसे दी होई नहीं। लेकिन सतगुरु देव जी महाराज कहंदे 500 वरे जीवना 1000 साल जीवना
2: कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कोई जीवे चार युगां तक इतनी लंबी जिंदगी किसे नू प्राप्त हो जाए, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। एक एक युग दी उम्र भी पुराणक ग्रंथां दे मुताबक लखां साल दी है, ते हुण चार युगां दी उम्र ते काफी बनदी है। ते सतगुरदेव जी महाराज कहिंदे ने ए होर दस गुणा वध जाए, इतनी लंबी उम्र होवे, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए। तो प्रथम लालसा जीवन दी, दूसरी लालसा मनुख दे अंदर ए आउंदी है कि हर बंदा मैनू चंगा चंगा आखे, महान आखे, हर बंदे दी जबान देते मेरी उपमा होवे, मेरी तारीफ होवे। मनुख दी बुनियादी भुखां दे चों ए भी एक भुख है, जिथे बहुत लंबी उम्र भोगना चाहुंदा है उत्थे ए भी चाहुंदा है कि हर एक दी रसना ते मेरा जिक्र होवे, हर एक जबान मेरी तारीफ करे, मेरी उपमा दे पुल बने। तो पातशाह दा फरमान है, नवां खंडां विच जानी है नाल चले सब कोय। सिर्फ वड्डी उम्र ही ना होवे बल्कि नौ खंड पृथ्वी विच जाने आ जाए। किसे दी तां सिर्फ वाकफियत अपने घर दे च ही हुंदी है, घर दी चार दीवारी विच ही लोकी जानदे ने उस नूं, इस तों ज्यादा किसे नूं कोई नहीं पता। लेकिन कुछ एक मनुख ऐसे हुंदे ने कि उनूं मोहल्ले वाले भी जानदे ने, जिस कलोनी विच ओह रहिंदा है सारे उस नूं जानदे ने, उसदी इतनी चर्चा हुंदी है। कई दफा इस तों ज्यादा मनुख समर्थ बन जांदा है ते जिस शहर विच रहिंदा है सारे देशवासी सारे शहर वासी उसनू जानदे ने, सारे देश वासी उसनू जानदे ने, और कई दफा ऐसा भी आउंदा है कि सारा संसार उसनू जानदा है। इतनी उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, इतनी उसकी जगत दे चर्चा हो जाती है, सारे संसार विच उदी गल चलती है। तो पातशाह कहिंदे ने सिर्फ ए ही ना होवे कि उसकी उम्र बहुत वड्डी होवे, नौ खंड पृथ्वी विच जानिया भी जाए, नौ खंड पृथ्वी विच सारिया नू पता भी होवे कि इस ढंग दा भी कोई मनुख है। पर साहब नाल कहिंदे ने नाल चले सब कोय, वो जिस पासे जावे उदे नाल हामी भरन वाले सारे ही होवन। मजाले कोई इनकार कर जाए, कोई सामने खड़ा हो जाए, उदे नक्शे कदम ते चलन वाले होवन। जिधर ओ चले जगत उस पासे चले, जो कुछ ओ बोले जगत ओही कुछ करे। इतनी वड्डी कोई समर्था दा मालिक हो जाए, बादशाह कहिंदे ने फिर होर भी उस दे कोल खूबियां आवन। चंगा नाउ रखाए के जस की रथ जग ले, इतना उसका नाम चंगा हो जाए कि संसार दी हर जबान देते उसकी कीर्ति होवे, उसका जस होवे, उसकी महिमा होवे। महाराज कहिंदे ने इतनिया खूबियां दा भी कोई मालिक बन जाए ता जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के, जे परमात्मा दी निगाह दे थले नहीं आया ता अगे किसे ने गल नहीं पुछनी, भाव जीवन व्यर्थ चला गया। मनुखां दी नजरां तो उच्चा उठना आसान है, परमात्मा दी निगाह दे थले आ जाना औखा है, बहुत कठिन है। जीवन दी प्रबल लालसा इस गल दा सबूत है कि जीवन दे च कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है जीवन दी लालसा खत्म हो जाती है, जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है मरण दा भय भी खत्म हो जाता है। बुनियादी रूप च ते भय मनुख दे अंदर एको ही है, मरण दा, और कोई भय नहीं है। मनुख जद भी डरदा है मौत तो डरदा है, सप तो मनुख नहीं डरदा। सर्प दे अंदर छुपी हुई उसनू अपनी मौत दिखाई देंदी है उस तो डरदा है,
1: मनुख शेर तो नहीं डरदा, शेर दे अंदर उसनू अपनी मौत दिखाई देंदी है, इस वास्ते वो एक पासे हुंदा है। और अगां चलिए, मनुख दे अंदर ए जड़ा परबल भय है, ए रोम रोम दे च व्यापक है। इस वास्ते सियाणे कहिंदे ने कि धर्म दी मूल शिक्षा इन्हां ही दो गल्लां दे उपर खड़ी है कि जीवन दी लालसा तो उच्चे हो जाना ते मरण दे भय तो रहत हो जाना। भय ते मरण दा ही है ते मौत शास्त्रकारां ने कई तरह दी मनी है, आर्थिक मौत, राजनीतिक मौत, समाजिक मौत, धार्मिक मौत, शरीरक मौत, बौद्धिक मौत। मौत दे इन्ने अनेकां पहलू ने। आर्थिक मौत, दिवालिया हो गया है, बाल बाल करजाई हो गया है, देना सारिया दा है, लेना किसे कोल भी नहीं। लोकी कहिंदे ने इस दी ते आर्थिक तौर ते मौत हो गई, ए ते खत्म हो गया, अर्थ दी दुनिया विच ए मिट गया, धन दी दुनिया विच ए खत्म हो गया। तो चर्चा चल पैंदी है एदी आर्थिक तौर ते मौत हो गई। समाजिक मौत, कोई कलंक लग गया है, कोई दाग लग गया है, जगत विच अपजस हो गया है, तो आम चर्चा चल पैंदी है बे इस बंदे दी ते समाजिक तौर ते मौत हो गई है। मुड़ के इसकी प्रतिष्ठा बन सके, एदी इज्जत मान वड्याई बन सके, गल औखी, जिस तरह मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, इस ढंग दी भी किसे वक्त समाजिक तौर ते बंदे दी मौत हो जांदी है, मुड़ के समाज विच रुतबा प्राप्त करना औखा हो जांदा है। शरीरक मौत, आमदे हुए श्वास ना आवन, चलदे हुए श्वास रुक गए, शरीरक मौत। और इसे तरीके नाल बुद्धि विच विचारां दी शक्ति ही खत्म हो गई, आमदे हुए विचार रुक गए। जैसे कि पागल है, एदी बौद्धिक तौर ते मौत है, दिमागी तौर ते मर चुके है, शरीरक तौर ते ते जिंदा है, बौद्धिक तौर ते मुर्दा है पागल। उदे कुल शरीर दी जिंदगी ते है, उदे कुल बौद्धिक जीवन नहीं है, उदे कुल दिमागी जिंदगी नहीं है। ते बौद्धिक जिस दे कुल जिंदगी नहीं है, उते मनुखता तो भी थल्ले चला जांदा है, बल्कि पशुआं तो भी कई दफा ज्यादा थल्ले चला जांदा है। इस वास्ते दरिंदे पशुआं तो जिथे भय लगदा है, पागल तो भी डर लगदा है, क्योंकि बौद्धिक तौर ते मरिया होया है, सिर्फ शरीरक तल दे उते जी रहा है। तो भय मरण दा है, ए मरण चाहे बौद्धिक होवे, चाहे शरीरक होवे, चाहे समाजिक होवे, और चाहे आर्थिक होवे, ते चाहे राजनीतिक होवे। समुची दुनिया दे हर देश देच ऐसे मनुख हैं, घूम रहे ने अजे भी, जिन्हां नूं वेख के लोकी कहिंदे ने कि राजनीतिक तौर ते इन्हां दी मौत हो चुकी है। किसे वक्त उन्हां दी गल चलदी सी, किसे वक्त राजनीति दे आसमान ते सूरज दी तरह चमकदे सन, अज तारियां दी तरह टिमटिमाना भी नहीं है, खत्म हो गए। राजनीति विच अज गल नहीं है, अज चर्चा नहीं है, तो कह दिता जांदा है फलाने दी राजनीतिक तौर ते मौत हो गई, खत्म हो गया। धार्मिक मौत एक रूहानी मौत भी है। गुरु नानक देव जी महाराज उसका जिक्र करते ने, आखां जीवां बिसरे मर जाऊं, ए अकाल पुरख, जद मैं तेरी चर्चा करदा, तेरा जिक्र करदा, तेरी उस्तत करदा, तेरी याद अंदर चलदी है तो जिंदा रहना, ते जद नहीं अंदर याद चलदी तो मर जाना। मरणं बिसरणं गोबिंदे, जीवणं हर नाम ध्यावणे। गोबिंद नूं भुल जाना, परमात्मा नूं भुल जाना, गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहिंदे ने, मौत है, पर रूहानी मौत, अध्यात्मक मौत। शरीरक तौर ते मनुख जिंदा होवे, बौद्धिक तौर ते मनुख जिंदा होवे, पर अंदर परमात्मा दा चिंतन ना होवे, तो सतपुरुष कहिंदे ने ए रूहानी तौर ते मुर्दा है, ए धार्मिक तौर ते मरिया होया, धर्म दी दुनिया विच ते ए बिल्कुल खत्म है,
3: ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਭੈ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੌਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਭੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿਰਮੌਰ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਘਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਖਤਮ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬੇ ਹਯਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਵੈਦ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਸਕੇ। ਅਮਰ ਫਲ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੂਟੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਮਰ ਫਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜੋ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜੀਵੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਦਰੇ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੀੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਉੱਤਮ ਕੀੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਸ਼ੈਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਉਗਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਇਹ ਨਿਖਿੱਧ ਕੀੜਾ। ਤੋ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਨਿਖਿੱਧ ਕੀੜਾ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰੇ, इस दोषी देते तरह तरह दे दोष आयद होणगे कि तू मनुख दी नजरां तो उच्चा उठण दी कोशिश कीती, परमात्मा दी निगाह थले आण दी कोशिश ना कीती। तू झूठा सन्मान प्राप्त करण दी कोशिश कीती, तू सच्ची इज्जत मान वड्याई प्राप्त करण दी कोशिश ना कीती। अंजाम की होया, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष दरे। पर साहिब गुरु नानक देव जी महाराज अगे फरमान करदे ने, परमात्मा दे दरवाजे हमेशा लई किसे वास्ते बंद ने। अगर कोई द्वार ते दस्तक देवे, भावे मुद्दत बाद देवे, किसे वक्त भी देवे, परमात्मा द्वार खोलण नू तैयार है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। वो ऐसा बख्शिंद है, ऐसा दयालु है जिदे कुल कोई भी गुण ना आवे पर उसका द्वार खटखटा देवे, गुणा नाल उसकी झोली भर देंदा है। और एक गुण इतना महान है कि लखां रुपए दे बदले भी बाजार विच मिलेगा नहीं। सबर, संतोख, खेमा, सील, संजम और प्रभु दा ज्ञान, आनंद, रस, बाजार विच सारी पूंजी भी खर्च करिए ते नहीं मिलेगा। पर परमात्मा ऐसा दयालु है जिड़ा उसके द्वार देते दस्तक देंदा है, अपने दैवी गुणा नाल उदी झोली भर देंदा है। तो सतगुरु दा फरमान, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, ते जिड़े पहले तो ही गुणवान ने उना दी झोली विच होर गुण पा देंदा है। ते मनुख दी महानता गुणा करके कोई मनुख निखेद है किस तरह पहचान होवेगी, औगुण ने। ते कोई मनुख महान है किस तरह पहचान होवेगी, उहदे कोल गुण ने। कोई परमात्मा दे नेड़े चला गया किस तरह पहचान होवेगी, उहदे कोल गुण ने। ते गुण सारे ही परमात्मा दे ने। जैसे पृथ्वी दे ते जितनी भी रोशनी है सारी दी सारी सूरज दी है, जगत दे जितने भी गुण ने सारे दे सारे गुण अकाल पुरख दे ने, परिपूर्ण परमात्मा दे ने। तो साहिब कहंदे ने, जिड़ा गुणवान है गुणा नाल उसकी होर झोली भर देंदा है, ओ परिपूर्ण परमात्मा जिड़ा उसके द्वार देते दस्तक देंदा है। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे, तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, मैं समूह जगत दते निगाह मार के वेख लईए, ऐसा दाता होर कोई भी नहीं, परमात्मा वर्गी होर कोई हस्ती नहीं कि निगुणियां नूं गुण दे देवे ते गुणवाना दी झोली होर गुणा नाल भर देवे, आनंद नाल भर देवे। ऐसा बख्शिंद, ऐसा दयालु, ऐसा समग्र व्यापक परमात्मा वर्गा होर कोई भी नहीं। तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोई करे। इस तरह दे गुण कोई होर दे सके, परमात्मा तो इलावा मैनू होर कोई नहीं दिखाई देंदा। और वास्तविक ए सही खोज सतपुरशां दे सामने ही आई है कि दाता केवल परमात्मा है, अकाल पुरख है, और वो दात दे रहा है। दात की आउंदी है जिदे बदले विच कुछ चुकाना ना पवे ते सानू मिल जाए। ये जिंदगी सानू दान विच मिली है, ये हाथ ते पैर सानू दान विच मिले ने, ये कुवा ते गुआई, ये बोलन दी शक्ति सानू दान विच मिली है, ये नेत्र सानू दान विच मिले ने, सोचण दी शक्ति सानू दान विच मिली है। और कोई मनुख अपनी झोली वड्डी करे तो होर बहुत कुछ उसकी झोली विच पै जांदा है, वो देण नूं हर वक्त तैयार है। दरअसल लैण वाले दी झोली छोटी आउंदी है या लैण वाला थक जांदा है। देंदा दे लैं दे थक पाए, लैण वाला ही थक जांदा है, वो देंदिया नहीं थकदा। ऐसा वो दातार है, ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, समग्र दुनिया दे उते दृष्टि मार के मैं वेख लिया है, तेहा कोय न सुजई, इस तरह दा होर कोई भी नहीं जिड़ा इस तरह दे गुणा दे नाल झोली भर देवे, रब्बी दैवी संपदा दे नाल माला माल कर देवे। इस तरह दा दाता जगत विच होर कोई नहीं। अक्सर देखण विच आया कि बहुत दफा मंगिए भी तां भी मनुख नहीं देंदा, पर परमात्मा ऐसा है कि अणमंगिया दान देवना कहो नानक सच समाल जियो। उते ऐसा बख्शिंद है, उते ऐसा दयालु है, अणमंगिया ही झोली च पा देंदा। मां बाप मिल गए ने बिना मंग तो मिले ने, औलाद मिल गई है बिना मंग तो मिल गई है, शरीर मिल गया है बिना मंग तो मिल गया है, हाथ पैर मिल गए ने बिना मंग तो मिल गए ने, सूरज दी रोशनी बिना मंग तो मिली है, घर दे च जैसे बिजली जल्दी ते महीने बाद बिल देंदे आ, सदियां तो सूरज रोशनी दे रहा है मुफत विच दे रहा है, दान विच दे रहा है, बदले विच असी कुछ नहीं चुका रहे, तो ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दाता है। उस नाल जे संबंध विछिन्न हो गए ने, टुट गए ने, ए मनुख दी बदकिस्मती है, ते टुटन दा इको एक कारण है जीवन दी लालसा ते मरण दा भय। हर वक्त जीवन दी लालसा दे च रहना ते हर वक्त मरण दे भय दे च रहना। कई मनुख ते इतने भयभीत होंदे ने कि अठे पैर उन्हां दे दिमाग चों एक गल किधरे निकलदी ही नहीं कि मैं बीमार ना पै जावां, मैं मर ना जावां, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, कमाया होया धन किधरे मेरा नास ना हो जाए, इस तरह दे नास होण दा भय हर वक्त जो है बनिया रहिंदा है। लिहाजा जीवन दी लालसा दा बोझ दिल दिमाग देते असवार रखदे ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, मरने की चिंता नहीं, क्यों जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रित पा ले लेखे सास गिरास। ए अकाल पुरख सानू मरण दा भय नहीं रहा, क्यों जीवन दी लालसा ही नहीं रही। ए अवस्था बनदी है उना भगतां दी जिन्हां नू पूर्ण परमात्मा मिल गया। परमात्मा दे मिलदे ही जीवन दी लालसा खत्म, परमात्मा दे मिलदे ही मरण दा भय खत्म, परमात्मा दे मिलदे ही गुणा नाल झोली भर गई, और एक एक गुण ऐसा रस देंदा है, ऐसा विस्माद देंदा है, ऐसी समाधि दे च मनुख नू लै जांदा है जिस रस दे उते, जिस आनंद दे उते दुनिया दे सारे रस कुर्बान किए जांदे ने, दुनिया दे सारे सुख कुर्बान किए जा सकते ने। लिहाजा इस तरह दे सुख ते आनंद नाल भगतां दी झोली हमेशा भरी रहिंदी है। साहिब कहिंदे ने ओ परिपूर्ण परमात्मा इस तरह दे दैवी गुणा नाल भगतां दी झोली भर देंदा और उन्हां नू सदैवी प्रसन्नता प्रदान कर देंदा।
0: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
4: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। और जानकारी ले कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700-403-439-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-409-7700-

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-453-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सतगुरां ने पावन हुक्मनामा आपां नूं बख्शिश कीता है उस दी विचार दे नाल जुड़दिया होया एक बारी सारी संगत प्यार नाल

0: महाराज जी समझाते हैं कि माया दे नाल चंबड़े रहे, लपट रहे। दूसरा शब्द महाराज वरतते हैं कि माया दे रंग दे विच मस्त हो गए, माया दा उन्हां नूं नशा चढ़ गया। एक तो प्रतख नशे हैं, गुरमत दे विच किसी भी तरह के नशे नूं वरतण की आग्या नहीं है, भावें कोई भी होवे। सिख दे जीवन विच नशा केवल नाम बाणी दा जां फिर प्रशादे दा चाहीदा है, इस तों इलावा तीसरा कोई नशा नहीं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कुछ ऐसे जिक्र करदे हन, कहिंदे जोबन धन प्रभता कै मद मैं एहनस रहे दीवाना। जवानी दा भी नशा दसदे हन, कुर्सी का भी नशा दसते हैं। तुलसी जी ने तो इतों तक कह दिता भी ऐसा किड़ा माई का लाल है भी थले कुर्सी होवे तां बंदे दी नज़र ही ना बदल जावे, बंदे दे तौर तरीके ही बदल ना जान, बंदे नू बंदे कीड़े मकौड़े ही ना दिखाई दे जान, किड़ा माई का लाल है। ऐसो को जन्म्यो जग माही प्रभता पाए जास मद नाही। बड़ा भयानक नशा है यह कुर्सी का नशा। जोबन धन प्रभता कै मद मैं, धन का नशा। महाराज समझा रहे हैं कि माया दे विच मस्त हो गए, माया का नशा उन्होंने चढ़ गया। लोचन कशु न सूझी, कहिंदे ऐसा नशा हो गया माया दा चढ़ गया कि माया दे नशे दे विच अन्ने हो गए, दिसना ही बंद हो गया। महाराज ने लिखा है ना गुरबाणी दे विच, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनाई बहु रोल कचोला। कहिंदा जो मैं कहना उही 100% सच है, किसी की गल सुनने वास्ते तैयार ही नहीं। माया दे नशे दे विच अन्ना हो गया, अन्ना करता माया ने। लोचन कशु न सूझी, अखां तो दिसना बंद हो गया।
1: बिखिया मैं किन्हे त्रिपत ना पाई,
0: इस विख रूपी माया दे विच, जहर रूपी माया दे विच किसी ने भी तृप्ति नहीं प्राप्त।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है यां तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street, Northeast Calgary।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पंजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स,

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो। यूनिट नंबर 144-3670 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646 इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वैबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेवह तुद जी जन नानक तेन कुर्बाणा हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी भरे बया।

तुद आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी, तू सब नी त्याया। जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनू तू जाना एह सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पैले निवासा। पाणी पावक तिन है किया, पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुगधा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा। जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। पही परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन।

प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद पीद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज किन्नी, ओत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताकि काल निकट नह है।
रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

मन चाउ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापै गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापै अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम तत् कर भोगो बिनवंत नानक प्रभ आप मिलिया कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जुगो गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर तारी दर्श सफलियो दर्श पेखियो मन निर्मल उजियारी विषम विषम विषम पही आग कोट हरते नाम लई गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही एक तुही भगत टेक तुहारी जन नानक शरण द्वारी सत गुर सत सत गुर कै शब्द सत सत साध संगत है गुरमुख जानिया दर्शन ध्यान सत शब्द सुरत सत गुरमुख संग सत सत कर मानिया दर्श ब्रह्म ध्यान शब्द ब्रह्म ज्ञान संगत ब्रह्म थान प्रेम पहचानिया सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान काम निह काम उन मानिया सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान काम निह काम उन मान

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तों दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
4: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
5: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते